के बिद सजा प्रथम संसार आय कह रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव की पूपा। अंडज जेरज से तज किने उत पुज खान बहुर रच दिने कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरे श्रेठ दिखाए चंपव आज जुगा स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखियो बार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवा तुत पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को एक बार त्याए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रक्षा होए ताए सब काला दुष्ट वरिष्ट ट्रै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तन कमो हरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होए दुष्ट शास सके न कोई। एक बार जंत मैं संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जनर नाम तिहारो कहा दार दुष्ट दुख ते रहा। खड़क केत मैं शरण तिहारी आपहान दे ले उबारी सर्व ठौर मोह सहाय दुष्ट दुख ते लियो बचाई सवैया।

मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे। कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक ता सुख हुआ तित करिया न हद वाजे, आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची बाणी, संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे, बिन मंत नानक गुर चरण लागे

कह नानक प्रभ लोचापुर संत जना के बांछो तूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु की पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कार योग सतसंगी जनों, वड पागे हाँ जिथे आप जिया ने संध्या समय नूं मुख रखद शब्द चौंकी उपरंत सोदार रहरा साहब जी की पावन बाणी के पाठ सरवण किए ने। सरबादे भले की अरदास तो उपरंत सतगुरां ने जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश की है, पवित्र उपदेश आप संगत ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित सरवण किए हैं। गुरद्वारा साहब विखे इस वीकेंड से दो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होंगे, जिन्हां दे भोग एतवार सवेरे 9:30 बजे पैणगे, उपरंत हफ्तावरी दीवान सजणगे। परिवारां अते नगर निवासियां वल्लों बेनती है आप जी ने दर्शन देने की कृपालता करनी जी। अज का पवित्र उपदेश जिस विच सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने मनुख नूं उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे उत्ते टेक भरोसा यकीन रखने की बात की है। हजूर महाराज फरमाते ने, तुद बिन दूजा नाहीं कोए, तू करतार करें सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। हे भाई, उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर नूं हर वक्त जपया कर। दुनिया की हर शै, दुनिया का हर पदार्थ उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के हाथ विच है। जीवन दे विच कदे भी किसी चीज की लोड़ होवे ते बेझिझक उस अकाल पुरख वाहिगुरु के दर ते जाके अरदास करिया कर और उहदे कोलों ही मंगण का यतन करिया कर। जदों भी असीं किसी समस्या दे नाल जूझते हाँ, दो चार होंदे हाँ, तो साढ़े मन में यह ख्याल सहजे ही पनपते ने, तो असीं दूजियां नूं कह भी दिंदे हाँ कि मेरी सिचुएशन नूं, मेरे हालात नूं कोई दूजा बंदा नहीं जाण सकदा। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जिहड़े हालातां दे विचों मैं दो चार हो रहा, जिहड़ियां पैरां दे उत्ते मैं खलोता, तुसीं मेरियां पैरां ते उसे टाइम ते खड़े नहीं हो सकते जिस वक्त मैं खड़ा हुंना। इस करके तुसीं चाहुंदिआं होइआं भी मेरी सिचुएशन नूं समझ नहीं सकते। मेरे हालात नूं, मेरी सिचुएशन नूं केवल उही समझ सकता है जिहड़ा उस वक्त उत्ते मेरियां पैरां ते खड़ा होवे। ते उह कौण है? बाबा जी उस नूं बाणी च कहिंदे ने, उह अकाल पुरख वाहिगुरू है। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी, तिन्ही सुनिया दुख सुख मेरा। जिन्हें ये शरीर नू मैनुफैक्चर किया है, क्रिएट किया है, बनाया है, वट एवर जिहड़ा मर्जी शब्द वरत लो, उही सेम टाइम के उत्ते उही जोत मेरे अंदर एग्जिस्ट करती है, दूजा नहीं कर सकता। तो मेरे हालातों नू मेरे तो बेहतर केवल उही जान सकता जो उस हालात विच भी मेरे नाल खड़ा हो। तो अकाल पुरख वाहिगुरू। तो बाबा जी कहते हैं, मनुख की टेक बिरती सब जान दे बन को एक है भगवान। बंदा बंदे दे दित्या कदे रज नहीं सकता, रब ही रजावे ते बंदा रज सकता। गुरु कृपा करे भुला चुकन दी क्षमा समा है। गुरबाणी शब्द कीर्तन का सेवा निभाउण के सत्कार योग भाई परमजीत सिंह जी लुधियाने वाले औतना पासों गुरबाणी शब्द कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

मैं कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हो सो

संत जना की बांछों तूर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, गुरु साहब जी के मुबारक चरणों के विच जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी माणयोग साध संगत, गुरु साहब जी की रहमत सदका समय विचो समा कढ़ आप गुरु दरबार दीयां हाजरियां भर रहे हो, जुड़ मिल बैठे हो। धन्यवाद है गुरु सवारे सत्कारत पंथक ढाडी जथे दा, बदनी कलां वाला ढाडी जथा, जो आप जी नूं गुरु साहब जी की दे पावन इतिहास के पन्नियां दे विचों ढाडी बारह हरजा साहब जी नूं सरवण करवा रहा सी। जथा कल ही अपने पास इत्थे गुरुद्वारा साहब विच पुज्जा है, तो आए हुए समुचे जथे नूं गुरु की समुची संगत वालों, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों, समुचे सेवादारां वालों ढाडी जथे नूं हार्दिक जिवाया आखदे हाँ। तो आने वाले दिनों दे विच इस तरह इन्होंने हाजरियां इन्हां दीआं दोनों वक्त होया करनगियां, और आप संगतों ने वध तो वध हाजरियां भर के सरवण करके जरूर आप जी ने लाहे प्राप्त करने। जथे दा धन्नवाद। गुरु चरणों के दवान की समाप्ति की अरदास, सरबत के भले की अरदास हुई है, बख्शिश स्वरूप पावन मुख वाह गुरु साहब जी ने बख्शा होया, आप जी ने सरवण किया है। तलंग राग सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज साहब सच्चे पातशाह तिना की मुबारक रसना तो उच्चारण किया होया, मुबारक शब्द आप जी ने मुख वाक हुक्मनामे के रूप के सरवण किया है। पातशाह मेहर करन बख्शा पावन उपदेश साड़ी जिंदगी का साड़े जीवन का आधार बने, गुरु चरणों में अरदास है, और ये नाली सजे हुए दवान की संपूर्णता है। सुखासन की सेवा थोड़ी देर रुक के की जाएगी, सहज पाठ साहब प्रारंभ ने तो सिंह ने पाठ करना है, इस वास्ते सुखासन की सेवा थोड़ी देर रुक के होएगी। कड़ाह प्रसाद का वर्तारा हो रहा है, आप जी जिन्होंने प्राप्त नहीं किया प्राप्त कर सकते हो, और उपरंत गुरु का लंगर आई हुई सारी संगत वास्ते तैयार है, सब ने आपो अपनी लोड़ मुताबक छक के जाने की कृपालता करनी। जुड़ मिल बैठी समुची संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पद संतो सागर पार उतरिय जे को भजन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिय संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ भागी पाए कोड़ जन्म के किल वेखनास हर चरण चित लाए उस्तद करो सदा प्रयापने जिन पूरी कल राखी जी जंद सब पहे पवित्रा सतगुर की सच साखी बेगन बिनासन सब दुह नासन सतगुर नाम दड़ाया पाप पहे सा पाव जन नानक सुख कर आया दर्शन प्यासी दिस रात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संगमीत ओ कहो टाल गुरु सेवी एने सह सुभाए दर्शन परस्या गुरु का जन्म मरण दुह जाए होवे शिव समदी नोरियर सों कुरसों चठिया डिठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सचा पातशाह सिरशा हुंदे

कर सबको पूरा आपे गोवे कटना कोई आख पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तो ले जा।

पर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको ससमावे रिग कह रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लिया प्राचित जाए नानक तो मुखंतर पाए जिज में जोर।

माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत

जब बुद्ध होती तब बड़ कैसा, अब बुद्ध बड़ ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। जब बुद्ध होती तब बड़ कैसा, अब बुद्ध बड़ ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली।

एक ओंकार वाहगुरु जी की फतेह। वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावे ताए सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे शीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखणियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म निहारिया सिखी केसां सवासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो। हिन माणिया दे मान नताणिया दे तान न्योटियां दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी का कुटान कुटान शुकराना आप जी ने बख्शिश की पावन हजूरी विच दीवान सजे सजे हुए दीवाना विच आप जी की धुरकी बाणी के कीर्तन गुरु शब्द दियां विचारां ढाडी वारां गुर इतिहास सिख इतिहास के गायन होए सतगुरु सच्चे पातशाह जी समुचियां सीमावां निभाउंदियां होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगे तो समत बख्शणी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न सेवा करन दे उद्दम बल बख्शिश करने बेअंत संगतां वल्लों सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी दे दर उत्ते पिटावां सीमावां आप जी ने दर ते प्रवान करनियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां। सतगुरु करो कृपा अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो अखर वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पही अकाल की तबै चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु को मिल बोच है खो शब्द में।